0: सत्य का युग मेला सत्य तेरे कर्ण सत्य ब्राह्मण सत्य तेरे सत्य का सत्य तेरे कर्ण सर्वचार सत्य तेरा अमृत सत्य दीवान सत्य तेरा हुक्म सत्य प्रमाण सत्य तेरे कर्ण सच्चा निशान सत्य तो दाते ला करो सच्चे शब्दान सच्चे सब
1: सच्ची तेरी से सच्ची सलाह सच्ची तेरी खुद सच्चे भाषा ना सच्चे सच्ची जो मर्ज में सो कच कच माला बैला
0: बड़ी बड़ी बड़ा बताला बड़ी बड़ा का सच नियो बड़ी बड़ा जने के दाओ बड़ी बड़े जाने वाला बड़ी बड़े कुछ सब पाओ बड़ी बड़ा जो पूछना दात बड़ी बड़ा जाए आप नान करना कथनी जाए खींचा करना सर्व जाए महला दूजा ए जग सच्चे की कोठड़ी सच्चे का विजवास इतना उसमाय लेकिन हुक्म कर बनास इतना पानी कर लेकिन माया सिनवास ए भी आकना दा पेच देने आ नाच तो गुरुमुख जानी ना को आत करे पर

गौ ब्राह्मण को कुरला वो गोबर तरण जाय तो टिका तेज माली तन में जगाई अंतर पूजा पड़े कि बस निम्बू का पाई चोगी लिपखंडा नाम ले गया था। मान खाने करे निवास।

स्थान करे ने बाद छुरी गायन तिन गल ताक तिन घर ब्राह्मण पूरे ना दुना ब्याह में ऐसा पूरी रास कूड़ा वा पार पूर्ण गोर करे हार सर्व धर्म का डेरा दूर नानक पूर रहया।

सब तो वड्डा मंगता। परमात्मा दे खजाने कदे खत्म नहीं हुंदे और इस मनुख दे कदे भरदे नहीं है, कदी नहीं भरदे, खत्म ही रहिंदे ने, घाटे वल नूं जांदे ने। भावें लख यतन करे के कारू मांगू माया दे गंढ जोड़ लवे, लेकिन फिर भी कमी रहिंदी है। एक सियाणा बंदा कहिंदा वे इंसान गंजे कारू जमा कर दी बाज ते, घर शबी सुल्तान आली बाज ते, घर तू मैदानी के आखिर मुर्द ने अस्त, ताकि आमत जिंदगानी बाज ते ता की होया। तो भाव है कि इस दे खजाने कदी भरदे नहीं और परमात्मा दे कदी खत्म नहीं हुंदे। सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी कहंदे ने परमात्मा दे खजाने जिहड़े ना अभंगा बेबूते। तो इस इंसान नूं पुत्र चाहिदे ने, तीहां चाहिदियां ने, ए मान मंगदा है, ए तान मंगदा है, ए शक्ति मंगदा है, कुवत कूत मंगदा है, इस नूं सब पदार्थ दुनिया दे चाहिदे ने। लेकिन सतगुरु कहंदे ने ए कोई बहुत उच्चे पाए दी मंग नहीं है, बहुत वधिया मंग नहीं है। परमात्मा बहुत वड्डा दाता है और वाहल शख्सियत है, वो वड्डा दाता है और उस नूं तिल जिन्नी भी तमा नहीं है। पदार्थ दिंदियां वो कदी थकदा नहीं, वड्डा दाता तिल ना तमाए। लेकिन इस इंसान दी तमा तृष्णा खत्म नहीं हुंदी, वो ते वाहल शख्सियत है, देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाए। इसलिए सतगुरु एक होर जगह वचन करते हैं, दद्दा दाता एक है सब को देवन हार, देंदे तोट ना आवे अगणित भरे भंडार। तो परमात्मा दिया अनेक खूबियां विचों एक बहुत ही वड्डी खूबी यह है कि वो इस मंगते इंसान दे ऐब देखता है, औकड़ देखता है, लेकिन दस्तूर इसनू दे ही जाता है, सदियां तो दिंदा है, जुगा जुगंतरा तो दिंदा है, दोखन देखता है,

मैं तेरे दर्दा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्ति।

कर्मी सहज न उपजे सहज सहसा न जाए कर्मी सहज न उपजे बिन सहज सहसा न जाए न जाए सहसा किते संयम रहे कर्म कमाल सहसे जियो मलीन है कित संयम तोता जाए कित संयम तोता जाए मन तो

अधिराता समय अचानक राजे नु जाग हुई। राजे ने की तके रानी वाला पलंग खाली पे है।

जो आज सत्संग विच आनंद आए है ओ राज गद्दी ते बह के भी जी जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लगी मेरी प्यारी सास संगत राड़े राणी दे उद्दम नाल फिर राजा सत्संगी बन गया स्त्री नु वाहिगुरु ने बड़ा फल दिता कई तेन कहते अबला है पर मैं ता कहना आदमी नालो स्त्री ज्यादा ताकत ज्यादा बल है तुसी तक लो ना स्त्री दो काराबाद कर दी स्त्री जो है ए दो कर अपने पिता दा घर भी आबाद कर दी है ते अपने सहुरियां दा घर आदमी को घर ही आबाद करता है अगो स्त्री वाहे विचार दी बात है एदे अंदर बल ज्यादा होया ना ताई बाबे ने स्त्री नु बड़ा मान बख्शे स्त्री दे हाथ विच सब कुछ है ए पति नु जैसा चाहे बना सकदी एदे अंदर ताकत पर थोड़ा जिहा तहमल चाहीदा थोड़ी जी विचार चाहीदी है थोड़ा जिहा सत्कार चाहीदा है तलखी विच नहीं आना चाहीदा जे पति गलती करदा प्यार नाल समझाना समझदिया समझिया तो पशु ही समझ आते आखो श्री भाई सुनदे सुनदे इंसान है तो मेरे कहण का मकसद स्त्री के अंदर वाहिगुरु ने बड़ा बल रखे तक लो राणी तारा ने अपने सत्संग दे शक्ति दे नाल राजे हरिश्चंद्र नु सत्संगी बनाया सत्संगी नहीं बनाया राजे नु धर्मी बनाया राजा हरिश्चंद्र बड़ा धर्मी राजा है और ए वस्तु कितों मिली तेरी सात संगत ए सत्संग विचों मिली नाम विचों मिली तो आओ प्यारी सात संगत आप भी धन हो जो ओ सत्संग विच आप सारे जुड़े हो अज मैं तो यह समझदा भी सारा दिन ही तुसी सत्संग की अमृत वेले तो लै जी अज सारा दिन नहीं वह ए है गुरु की बख्शिश ते तुहाडा प्यार जिस प्यार दे बूटे नू मालिक ने मेरा दे फल लाए अमृत वेले भी कीर्तन गुरुद्वारे भी कीर्तन ते इधर सार तारा सिंह जी बच्ची जी तो सारे परिवार नू बाबा जी ने प्रेरिया भी घर सत्संग होना चाहिए कीर्तन हो जाए बड़ा महत्व है जिस घर विच गंदे जरासीम हो जाए ना ज्यादा तो बीमारी पैण का खतरा हो जाता फिर असी की करते हैं DDT छिड़कते हैं ता जो जरासीम मर जाते बीमारी तो बच जाते हैं ते जिस घर विच दुख कलेश आ जान बाबा जी बचन करते सन उथे कीर्तन हो गया खो श्री वाहेगुरु बाणी का अमृत छिड़को नाम रूपी अमृत छिड़कोगे तो फिर की होगा नस वजो किल विखो करता जिथे गुरु आ जाए तो इन्हों बच्चिया ने बड़ा उद्यम किया बड़ी गुरु दी मेहर यंग हन दोवें पर मैं तो कहांगा जवानी सफल नहीं तो जवानी मस्तानी होंगी जवानी एक ऐसा मोड़ है चंगे पासे तो तुरना ही नहीं ना चंगी गल तो करनी नहीं ना किसी गुरमुख ने लिखिया भी एक जवानी दूजा धन पले फिर साई दी मेहर होवे तो सीधा चले नहीं तो डिंगा ही डिंगा तुरदा जांदा है तो ओ नौजवान बच्चे जो रोज आके गुरुद्वार जुड़दे हैं ते इना बच्चिया ने उद्यम किया है इना दा उद्यम सफल सत्संग कराया है गुरु दी बख्शिश प्राप्त कीती है फिर इना दे उद्यम नाल आपा सारे गुरु नाल जुड़े हाँ ए भी बड़ा पुण्य बाबा जी वचन करदे सन किसे नू गुरु नाल जोड़ देना इस तो वड्डा पुन कोई नहीं है किसे नू तोड़ देना इस तो वड्डा पाप कोई नहीं तो इस परिवार ने जो कालना काली है तो गुरु बाबा बख्शिश करे आपां अरदास करनी है इन्हां बच्चियां दे सिर ते गुरु सदा मेहर प्रयात राज जोग भक्ति शक्ति सारियां दातां गुरु बख्शे ते इन्हां दे उद्दम नाल आपां जुड़े हां सानू भी गुरु आप दे चरणा नाल जोड़ी रखे ते नाम बाणी दी दात ते कीर्तन दी दात
ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਹਿਲੇ। ਤੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਫਿਰ ਪੜ ਲਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਾਮ ਦੇ ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸੀ।

अनंसाव का पाठ करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चों वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वह भी प्रवान करनी तो आओ हम अनंसाव का पाठ

ग्रंथ दे अंदर किसे संत गुरु की बाणी अवतार दी बाणी दे विच ए नहीं लिखिया भाई संसार दी खोज करो संसार चो ए कुछ मिलेगा। संसार प्रतख है, जाहिर है, ते जाहिर चीज जेड़ी है नजर आ रही है, संसार ते नजर आ रहे हैं ना, केड़ी केड़ी चीज इस दे विच मिल सकती प्राप्त हो सकती है। पर एक रब दा दर है, प्रभु दा दर है, जेड़ा नजर नहीं आउंदा ते उस तक पहुंचना है। भाई गुरदास साहब ने बड़ा सुंदर हवाला दिता अपनी पावन कवित बाणी दे अंदर लिख देने।

होए के पली राज पूले, कहूं पवर होए के भली पात पूले, कहूं फूल होए के भली राज पूले, कहूं भवर हो।

बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राजमंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच कहाँ

गोविंद ना भजे अहम बुद्ध माता जन्म जुए ज्यो हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे मोढ़े वस्त्र का जर्म